किशोर कुमार की आवाज से सजा ये गीत मशाल फिल्म से साथियों अभी आपने सुना। 1984 रिलीज ये फिल्म, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था और जावेद अख्तर की लिखी रचना थी।

इस समय श्रोता साथी सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। प्रातः के 5:35 हुए हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। साथियों, भोर सुहानी हो चुकी है, सूर्य की किरणें सज चुकी हैं।

और हम भी तैयार हैं अपने सपनों को, जो सपने हमने बुने हैं उनको पूरा करने के लिए। आइए हम सब बढ़ें अपने सपने पूरा करने के लिए, जो हम सब ने बड़े ही चाव से बुने हैं।

मुकेश की आवाज़ से सजा। ये गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज़ से सजा। आनंद ये था फिल्म का नाम जिसका ये गीत था। 1971 रिलीज ये फिल्म। सलील चौधरी का संगीत था, गुलजार की लिखी रचना। और अब जिंदगी का सबक देता, संदेश देता ये तराना।

0: जाती है, तीनों जिंदगी गाती है।
1: जिंदगी का सुंदर संदेश देता ये गीत आशा भोसले की आवाज में अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना, फिल्म का नाम पगला कहीं का, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1970 में। और अब एक और संदेश देता ये गीत।

0: लाते चले।
1: नौशाद का संगीत पद किया ये गीत शकील बदायूं ने की लिखी रचना, फिल्म का नाम अनोखी अदा जो रिलीज हुई थी वर्ष 1948 में, मुकेश की आवाज। और अब आज के भोर सुहानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये गीत।

लता मंगेशकर, मुकेश की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, इंद्रजीत सिंह तुलसी के बोल, फिल्म का नाम शूर, रिलीज वर्ष 1972।

साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों

आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा,

0: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Nina Rakel. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at 250th Independence Day celebration of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jaishankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why their counter-terrorism cooperation is so important. He said that both nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices. Mentioning the visit of U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio, Dr. Jaishankar said this visit highlights the significance of India-U.S. ties in contemporary times. He added that a year ago, Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump set out a pathway for the further development of both nations' enduring partnership. U.S. President Donald Trump dialed Secretary of State Marco Rubio during an event celebrating America's 250 years of independence at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. U.S. President described Prime Minister Narendra Modi as a friend and stated that ties between the two nations had never been closer. He even called himself a big fan of PM Modi. Mr. Trump said India can count on him 100%.
4: I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Rainbow 101.9

दोस्तों कृपया ध्यान दें, स्टेशन नंबर 101.9 में आपके फेवरेट इंफरटेनमेंट एक्सप्रेस नमस्ते हेलो आदाब आपके पास पहुंच गई है निर्देशित समय में ही। इसे लेकर आया हूँ आपका दोस्त आरजे चरण। यस लिसनर्स, वेलकम टू नमस्ते हेलो आदाब। आई एम रेडी विथ लोड्स ऑफ इंफरटेनमेंट फॉर दिस ब्यूटिफुल ट्राइलिंगुअल शो। वी विल नाउ बिगिन विथ एन एनर्जेटिक नंबर। स्टे ट्यून टू 101.9।

दोस्तों, वीकेंड में रिलैक्स होने के बाद ऐसा लगता है कि और एक दिन छुट्टी मिल जाए, लेकिन आगे तो बढ़ना ही चाहिए। हम अपने आसपास में देखिए, आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन बहुत मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द टेम्परेचर्स, हीट वेव्स एंड ट्रैफिक आउट देयर। इज एनी थिंग एवर सेइंग आई हैव कम सो लॉन्ग, इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम, लेट मी जस्ट टेक ए स्मॉल ब्रेक। नहीं ना, नॉट एट ऑल। बीटिंग ऑल दिस, वी आर ऑलरेडी गोइंग फॉरवर्ड एंड वी ऑल हैव टू गो फॉरवर्ड। व्हाट डू यू से?

दैट वॉज ऑफ कोर्स द सॉन्ग हीट वेव्स। दोस्तों, इस समर के बारे में बात करें तो समर हॉलीडेज मिलेंगे बच्चे को, लेकिन दोस्तों एक बार घर पे बच्चों के हरकतें के बारे में बात करते हैं। स्कूल जाने के टाइम में तो 8 बजे मुश्किल से उठाना पड़ता है, छुट्टियों में तो 6 बजने से पहले खुद ही उठ जाते हैं। कुछ रिवर्स साइकिल ही चल रही होती है उनकी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे खेलने जाते हैं। अनलेस इट इज़ वेरी सनी, इट इज़ ऑफ कोर्स वेरी नाइस एंड अमेजिंग टू प्ले आउटसाइड टू स्टे फिट टू स्टे एक्टिव। व्हाट डू यू थिंक?

Yes, listeners, welcome back. You are listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. This is your RJ Charan. We are in our favorite show, Namaste, Hello, Adab. Aur hum baat kar rahe the bahar jaake khelne ke bare mein. To ab aapse ye sawal puchna chahta hu ki outdoor games mein aapka favorite game kya hai? Game ya sport, kuch bhi ho sakta hai. To हमें मैसेज कीजिए और हमें बताइए. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0402323482. मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि 0402323482. और बताइए हमें आपका फेवरेट गेम या स्पोर्ट्स क्या है. मैं आपके मैसेज के लिए वेट कर रहा हूँ राइट इन द स्टूडियोज. एंड टिल देन कीप लिसनिंग टू 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM Rainbow 101.9 और मैं हूं आपका दोस्त आजय चरण। आज डेट है 25 मई और पूरी दुनिया आज सेलिब्रेट कर रही है वर्ल्ड फुटबॉल डे। सो UN जनरल असेंबली ने ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास करके इस दिन को रिकॉग्नाइज किया है ताकि हम इस ब्यूटीफुल गेम की ग्लोबल रीच, डिप्लोमेसी और पीस मेकिंग पावर को एक्नॉलेज कर सकें। चाहे आप स्ट्रिक्टली क्लब फुटबॉल देखते हो या फिर स्ट्रीट पर दोस्तों के साथ खेलते हो, फुटबॉल एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर बॉर्डर और कल्चर को ट्रांसेंड करती है। हम बात करेंगे इस गेम की इतिहास की, इंडिया के लेजेंडरी फुटबॉल सफर की और हमारे तेलंगाना के बड़े अपडेट्स की। डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए FM Rainbow 101.9, रेनबो के साथ लाइफ रंगीन।

FM रेनबो 101.9 पर आप है आरजे चरण के साथ। जब हम फुटबॉल की बात करते हैं तो कुछ नाम सीधे दिमाग में आते हैं। अर्लिंग हालैंड जो मैनचेस्टर सिटी के लिए गोल्स की बारिश कर रहे हैं, एम्बापे जो रियल मैड्रिड की जर्सी में तबाही मचा रहे हैं।

0: और जूड बेलिंगम जो उन्हें के साथ मिडफील्ड डोमिनेट कर रहे हैं, और हाँ इंटर मियामी के लियोनल मेसी और अल नसर के क्रिश्चियन रोनाल्डो का क्रेज तो अभी भी अलग लेवल पर ही है। इन प्लेयर्स ने मॉडर्न क्लब फुटबॉल को एक ग्लोबल फेनोमिनन बना दिया है, जिसे देखकर हमारी यंगर जनरेशन भी इंस्पायर हो रही है। आपका फेवरेट इंटरनेशनल प्लेयर कौन है मुझे जरूर बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0402323482 में। फिलहाल सुनिए ये जबरदस्त ट्रैक जो बिल्कुल इन्हीं प्लेयर्स की तरह एनर्जेटिक है।
1: Thank you.

यस ऑफ कोर्स, दैट वाज एन अमेजिंग सॉन्ग, मस्तों का झुंड। सो आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, मैं हूँ आरजे चरण। तो दोस्तों, फुटबॉल की बात करते हैं। क्या आपको पता है कि 1950s और 1960s को इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एरा कहा जाता है? लेजेंडरी कोच सैयद अब्दुल रहीम के अंडर इंडियन टीम ने इंटरनेशनल लेवल पर डंका बजाया था। हमारे प्लेयर्स बिना जूते के बेयर फूट भी ऐसी टैक्टिकल एजिलिटी दिखाते थे कि बड़ी बड़ी टीम्स हैरान रह जाती थी। नेविल डिसौजा, चुनी गोस्वामी और पीके बनर्जी जैसे आइकॉन्स ने इंडियन फुटबॉल की फाउंडेशन रखी थी। उस दौर के पैशन आज भी हमारा फुटबॉल इकोसिस्टम को इंस्पायर करता है। चलिए, इसी हिस्टोरिक मेमोरी के साथ सुनते हैं हमारा अगला हिट और सुपर हिट एनर्जी सॉन्ग।

अपना नाम दर्ज करवाया। करंटली इंडियन टीम फीफा रैंकिंग्स पे कंटिन्यूअसली टॉप 100 के भीतर आने के लिए फाइट कर रही है और SAFF चैंपियनशिप जैसे टूर्नामेंट्स में हमारा डोमिनेंस बरकरार है। प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है पर ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव है। सुनते रहिए FM रेनबो, आगे बात करेंगे इंडिया के उन स्टेट्स की जहां फुटबॉल एक मजहब है।

0: ఒక్క శ్రీ చైతన్య నుండి.
1: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
2: Yes, listeners, FM Rainbow 101.9 में आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूँ आरजे चरण. तो अब बात करते हैं हमारे अपनी स्टेट तेलंगाना की. रिसेंटली तेलंगाना ने स्टेट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करते हुए AFC वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर्स मैचेस को होस्ट की थी, जो हमारी वुमेन प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है. और दोस्तों, सबसे बड़ा हाईलाइट जो अभी कुछ समय पहले हमने देखा तेलंगाना राइजिंग सेलिब्रेशंस के दौरान, जब ग्लोबल आइकॉन लियोनेल मेस्सी हैदराबाद आए थे. ताज फलकनामा पैलेस में उन्होंने CM रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उप्पल स्टेडियम में जो एग्जीबिशन मैच हुआ, जहां CM रेवंत रेड्डी जर्सी नंबर 9 और मेस्सी जर्सी नंबर 10 पहनकर आमने सामने थे, उसने पूरे हैदराबाद में फुटबॉल मेनिया क्रिएट कर दिया था. गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उस मैच के हिस्से बने, जो हमारे लोकल टैलेंट के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी. वी विल टॉक मोर अबाउट इट आफ्टर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग.

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपका दोस्त आजय चरण। आज डेट है 25 मई और आज इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे भी है। इस दिन को शुरू किया था एनजीओ फ्री द ओशन ने एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल विजन के साथ कि साल में कम से कम एक दिन हम सब कम्प्लीटली सिंगल यूज प्लास्टिक को रेफ्यूज करें। उनका कहना है कि अगर दुनिया का हर एक इंसान सिर्फ एक दिन के लिए भी एक सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम को नो बोल दे तो हम एक ही दिन में सिर्फ एक ही दिन में 7.5 अरब से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट करने को जनरेट होने से रोक सकते हैं। यह दिन किसी फॉर्मल थीम के पीछे नहीं भागता, इसका सीधा और क्लियर टारगेट है रेफ्यूज सिंगल यूज प्लास्टिक, सेव द ब्लू प्लैनेट। तो चलिए आज के दिन एक छोटा सा चेंज लाते हैं। स्टे ट्यून्ड क्योंकि आगे हम बात करेंगे कुछ हैरान करने वाले स्टैट्स की, राइट आफ्टर दिस सुपर हिट सॉन्ग।

वेलकम बैक टू एफएम रेनबो 101.9। मैं हूँ आरजे चरण। सो दोस्तों, अब हम बात करते थोड़ा सा हैरान करने वाले स्टैटिस्टिक्स के बारे में। क्या आपको पता है कि हम हर साल ग्लोबल लेवल पर 380 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, और सबसे दुख ही बात यह है कि उसमें से आधा प्लास्टिक सिर्फ सिंगल यूज़ होता है, यानी उसे यूज़ किया और फेंक दिया। ग्लोबल रिसाइकलिंग रेट सिर्फ 9% है, बाकी सब हमारे ओशंस और लैंडफिल्स को बर्बाद कर रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो हम हर साल लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं। हमारी रिवर्स, ड्रेनेज सिस्टम और लाइव स्टॉक इससे बैडली इफेक्ट हो रहे हैं। सोचिए, एक प्लास्टिक बैग जिसे हम सिर्फ 10 या 20 मिनट यूज़ करते हैं, उसे डिकम्पोज होने में 500 साल तक लग जाते हैं। सच में 500 साल। ये सिचुएशन सच में अलार्मिंग है बहुत।

0: बस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे ही हाथ में है। एक सॉन्ग के बाद हम बात करेंगे कुछ इजी लाइफस्टाइल अल्टरनेटिव्स के बारे में। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून टू 101.9।
1: दिस इज द फ्यूचर मैन।

0: ఫీజు లేకుండా న్యాయ సహాయాన్ని న్యాయబంధు మొబైల్ యాప్ మరియు www.probono-dog.in ద్వారా పొందవచ్చు.
1: FM Rainbow 101.9
2: FM Rainbow 101.9 पर आप है आरजे चरण के साथ. प्लास्टिक फ्री बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी आदत बदलनी है. कल जब आप मार्केट जाओ ना, तो प्लास्टिक बैग को स्ट्रिक्टली रेफ्यूज करके अपना क्लॉथ या जूट बैग साथ लेकर जाओ. ऑफिस या जिम के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स की जगह मेटालिक या कॉपर बॉटल्स का इस्तेमाल शुरू करो. और हाँ, जब भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करो ना, तो कस्टम सेटिंग्स में जाकर डोंट सेंड प्लास्टिक कटलरी ये ऑप्शन को सेलेक्ट करना मत भूलना. घर पर प्लास्टिक गार्बेज बैग्स की जगह कंपोस्टेबल या पेपर लाइनिंग्स यूज करो. ये छोटे छोटे स्वैब्स ना हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे. तो चलिए आज इस इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे पर एक साथ प्लेज लेते हैं टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट. फिट रहिए, इको फ्रेंडली रहिए और सुनते रहिए FM Rainbow 101.9. एंड टिल देन यू विल बी लिसनिंग टू अ सुपर हिट ट्रैक टाकी टाकी.

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूं आपका दोस्त आजय चरण। आज 25 मई है दोस्तों, और आज बॉलीवुड के सबसे बड़े सबसे ग्लैमरस फिल्म मेकर करण जौहर यानी हमारे केजो का बर्थडे है। बॉर्न इन 1972, करण जौहर ने हिंदी सिनेमा को रीडिफाइन किया है। जब हम 90s और 2000s की बात करते हैं तो फैमिली वैल्यूज, ग्रैंड सेट्स और आइकॉनिक लव स्टोरीज का पूरा क्रेडिट केजो को ही जाता है। कुछ कुछ होता है इसे लेकर कभी खुशी कभी गम तक उन्होंने हमें सिखाया कि इट्स ऑल अबाउट लविंग योर पेरेंट्स। उन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस को इंडिया का एक सबसे बड़ा सिनेमैटिक पावर हाउस बनाया है। अगर आप भी बॉलीवुड के फैन हैं तो आज उनका एक ब्लॉकबस्टर गाना सुनना तो बनता है। सुनिए ये ट्रैक और रहिए हमारे साथ।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: News in Hindi and later news in English.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। दो पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: Yes, of course, Musically Yours. Good afternoon, Hyderabad. आप सुन रहे हैं FM Rainbow 101.9 और मैं हूँ आपका होस्ट RJ चरण. और अब हम बात करते हैं हमारे बॉडी के उस छोटे से इंजन को जो हमारी पूरी एनर्जी को चलाता है, हमारा थायराइड ग्लैंड. हाँ, हमारी गर्दन के बस पर छोटी सी बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है जो T3 और T4 हॉर्मोन्स बनाती है. ये हॉर्मोन्स हमारे मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट और डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं. पर दिक्कत तब आती है जब ये इंजन डिस्टर्ब हो जाता है. अगर ये अंडर एक्टिव हो जाए तो उसे हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं, जिसमें बिना वजह वेट बढ़ना और वक्त थकान हो रहती है. और अगर ये ओवर एक्टिव हो जाए तो हाइपर थायरॉयडिज्म होता है, जैसे सडन वेट लॉस और एंग्जाइटी होने लगती है. इस ऑटोमेटिक सिस्टम को चेक में रखना ज़रूरी है. और ये बातें हम इस ब्यूटीफुल सॉन्ग के बाद बात करते हैं. स्टे ट्यून्ड टू 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Yes, welcome back to FM Rainbow 101.9. मैं हूँ आरजे चरण. So, आज पूरी दुनिया वर्ल्ड थायराइड डे मना रहा है. इस दिन को 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन ने शुरू किया था ताकि लोग इस साइलेंट ग्लैंड के डिसऑर्डर्स को इग्नोर ना करें. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस साल यानी 2026 का ऑफिशियल थीम है थायराइड एंड न्यूट्रिशन. ये थीम हमें याद दिलाता है कि हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे थायराइड हार्मोन्स पर पड़ता है. दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा लोग आयोडीन डेफिशिएंट रीजन्स में रहते हैं, इसलिए हमारी डाइटरी चॉइसेस ही हमारा सबसे बड़ा डिफेंस है. तो चलिए न्यूट्रिशन और हेल्थ के इस मूड को अगले सॉन्ग के साथ और बेहतर बनाते हैं.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Yes, दोस्तों आप सुन रहे हैं FM Rainbow 101.9 और मैं हूं आपका दोस्त आजे चरण। और अब हम याद करते हैं भारत के एक ऐसे निडर फियरलेस रेवोल्यूशनरी को जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की नींद उड़ा दी थी, राज बिहारी बोस। बॉर्न ऑन 25 मई 1886, उन्हें उनके माइंड ब्लोइंग ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स और मास्टरफुली एग्जीक्यूटेड प्लॉट्स के लिए जाना जाता है। जब उन्होंने 1912 में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज पर दिल्ली के चांदनी चौक में बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया तो ब्रिटिश पोलिश हैरान रह गए कि इतना बड़ा नेटवर्क उनके नाक के नीचे कैसे चला रहा था। राज बिहारी बोस सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट थे जो जानते थे कि इस दुश्मनों को उन्हीं की गेम में कैसे हराना है। इस महाहीरो को सलाम करते हुए सुनते हैं अगले ट्रैक।

वेलकम बैक लिजनर्स, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आरजे चारण। तो राजबिहारी बोस की कहानी भारत से शुरू होकर जापान तक जाती है। ब्रिटिश सर्वेलेंस से बचने के लिए जब उन्हें जापान जाना पड़ा तो उन्होंने वहाँ रुककर अपने देशभक्ति को कम नहीं होने दिया। उन्होंने वहाँ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की और बाद में आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी की फाउंडेशन को मजबूत किया। और दोस्तों, उनका सबसे बड़ा और सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन ये था कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस साउथ ईस्ट एशिया आए तो राजबिहारी बोस ने खुशी खुशी INA का पूरा कंट्रोल और लीडरशिप नेताजी के हाथ में सौंप दी। उनके इसी विजन ने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को एक ग्लोबल शेप दिया। ऐसे महान सन्यासी और क्रांतिकारियों को हमारा शत शत नमन। सुनते रहिए FM रेनबो, स्टे ट्यून टू 101.9।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

कनेक्ट नहीं हो रहा। और आप हमको जो बताना चाहते हो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि हमारा व्हाट्सएप में मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0402323 4820 और मैं आई विल रीड दैट मैसेजेस एंड टिल देन यू लिसन टू दिस सुपर हिट सॉन्ग।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर, और हमें आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।
1: FM रेनबो 101.9।
0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। सामाइन, 9:30 और 40 सेकंड्स हो रहे हैं स्टूडियोज की घड़ी में। प्रोग्राम नैरंग का आगाज हो, आइए सुनते हैं एक अच्छी बात। दोस्तों, खुशबू हमेशा फूल के साथ नहीं रहती, मगर उसकी याद दिल को महकाती रहती है। इसी तरह नेक अमल और नर्म लहजा इंसान के जाने के बाद भी दिलों में जिंदा रहता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि असल सरमाया हमारे अखलाक और किरदार हैं, जो दूसरों के दिलों में देर पा खुशबू की तरह बाकी रहते हैं। तो सामाइन, अपने अखलाक और किरदार को

संवारिए ताकि आपकी याद हमेशा हमेशा के लिए आपके जाने के बाद भी दूसरे महसूस करते रहें, आपकी कमी दूसरों को महसूस होती रहे। तो अपने अखलाक और किरदार ज़रूर आप सुधार सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ सामाइन आइए शुरुआत करते हैं नए रंग प्रोग्राम की।

मेरे दिल की किस्मत जगाओ जरा तुम, मेरे दिल की किस्मत जगाओ जरा तुम, मेरी तिशनगी को बुझाओ जरा तुम।

की किस्मत जगाओ जरा तुम। मख्ता पेश करता हूँ। ख्यालों में तश्कील अनवर के आकर, ख्यालों में तश्कील अनवर के आकर, हुनर शायरी का सिखाओ जरा तुम। ख्यालों

दोस्तों, हम रोजाना नई गाड़ियों, स्मार्टफोन्स और रोबोट्स की बातें करते हैं, ना? लेकिन क्या कभी आपने उस मशीन पर गौर किया है जिसे हम इंसानी जिस्म कहते हैं? अगर सच कहूँ तो इससे ज्यादा पेचीदा और परफेक्ट मशीन आज तक दुनिया में नहीं बनी। आज हम आपको बताएंगे कि आपके अंदर क्या-क्या जादू हो रहा है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे हेडक्वार्टर यानी इंसानी दिमाग की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग सिर्फ 20 वॉट बिजली इस्तेमाल करता है? इतनी बिजली जिससे एक छोटा सा बल्ब जल सके, लेकिन इस कम बिजली में ये वो काम कर जाता है जो दुनिया का बड़े से बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकता। इसीलिए दिमाग को सुपर कंप्यूटर से भी बढ़कर कहा गया है। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो हर सेकंड में लाखों सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। जब आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, फौरन दिमाग को पता चलने और हाथ पीछे हटाने में सेकंड का 1000वां हिस्सा लगता है। ये स्पीड किसी भी

फाइटर जेट से ज्यादा तेज है। दिल और खून की गर्दिश की अगर हम बात करें तो अब जरा अपने सीने पर हाथ रखें। ये जो धक धक आप सुन रहे हैं, ये आपके जिस्म का सबसे मेहनती पंप है। आपका दिल एक दिन में तकरीबन 1,00,000 बार धड़कता है। और दिलचस्प बात सुने, एक बालिग इंसान के जिस्म की तमाम खून की रगों को निकाल कर एक लंबी लाइन में जोड़ दें तो वो इतनी लंबी होंगी कि ज़मीन के गिर्द 2-2.5 चक्कर लग जाएं। जी हाँ, तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर लंबी रगें हमारे छोटे से जिस्म में समाई हुई है। ये रगें हर वक्त हमारे जिस्म के हर कोने तक खुराक और ऑक्सीजन पहुंचा रही है। चलें अब थोड़ी बात करते हैं हमारे ढांचे की। क्या आपको मालूम है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी 300 हड्डियां होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और बड़े होने तक सिर्फ 206 हड्डियां बाकी रह जाती है। हमारी रान की हड्डी फेमर कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती है। और जनाब, आपका जिस्म सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं, इसके पास अपनी खुद की आर्मी भी है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। हर लम्हा लाखों जरासीम आप पर हमला करते हैं, लेकिन आपके वाइट ब्लड सेल्स सिपाहियों की तरह उनसे लड़ते हैं और आपको बीमार होने से बचाते हैं। हमें तो पता भी नहीं चलता और अंदर जंग जीती जा चुकी होती हैं।

अच्छा दोस्तों, अब जरा अपनी आंखों के बारे में सोचें। क्या आपको मालूम है कि इंसानी आंख तकरीबन 1 करोड़ मुख्तलिफ रंगों में फर्क कर सकती है? साइंस कहती है कि अगर हमारी आंख एक डिजिटल कैमरा होती तो ये 576 मेगापिक्सल्स का कैमरा होती। दुनिया का महंगे से महंगा फोन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और सबसे मजे की बात, आपकी आंख के पट्टे जिस्म में सबसे ज्यादा मुतहरिक होते हैं। ये एक दिन में 1 लाख से ज्यादा बार हरकत करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप रोजाना 80 किलोमीटर पैदल चले हों।

मेदी और खुराक का जो सफर है उसके बारे में अब जरा बात हो जाए। इस पिज्जा या बिरयानी की जो आपने अभी खाई होगी, जैसे ही निवाला आपके मुंह में जाता है, साइंस का एक लंबा सफर शुरू हो जाता है। हमारे मेदे यानी स्टमक में एक ऐसा एसिड यानी तेजाब होता है जो धात यानी स्टील को भी पिघला सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन परेशान ना हो, ये तेजाब आपके मैदे को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि कुदरत ने मैदे के अंदर एक खास हिफाजती दीवार बनाई हुई है। ये मशीनरी 24 घंटे काम करती है ताकि आपको तवनाई मिल सके और आप दौड़ भाग सके। अब चंद हकायक की हम बात करें। इंसान की छींक की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा होती है। हमारी आंख का लेंस दुनिया के बेहतरीन कैमरे से भी ज्यादा तेज फोकस करता है। इंसान के फिंगरप्रिंट्स की तरह

इंसान की जुबान का निशान भी अलग होता है। दोस्तों, आज हमने अपने जिस्म के अंदर का वो सफर किया जो शायद हम रोजाना महसूस नहीं करते। दिमाग की बिजली से लेकर दिल के पंप, आंखों के मेगापिक्सल्स और मैदे के तेजाब तक हमने देखा कि हम खुद एक चलता फिरता साइंसी मौजजा है।

सच तो ये है कि इन साइंस सिर्फ लेबोरेटरियों या किताबों में नहीं होती, ये हमारे हर सांस में, हमारी हर धड़कन में मौजूद है। अगर हम सिर्फ अपने आप को ही गौर से देख लें तो हमें कायनात की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग समझ आ जाएंगी।

में हमारी हर धड़कन में मौजूद है। अगर हम सिर्फ अपने आप को ही गौर से देख लें तो हमें कायनात की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग समझ आ जाएंगी।

तो दोस्तों, ये थी हमारी अजनबी सी दिखने वाली लेकिन अपनी ही दुनिया। सच तो ये है कि हम खुद एक चलता फिरता मोजज़ा है। अपने जिस्म का ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा खाएं और इस अजीम तख्लीक पर शुक्र अदा करें।

किशोर कुमार को आपने सुना फिल्म प्रियतमा में। सामाइन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नयरंग, और नयरंग में गीत सुरीले गाते जा। इस सिलसिले के तहत कुछ मेरी पसंद के फिल्मी गीत पेश किए जा रहे हैं। दोस्तों, जब रात होती है तो हर रात अपने साथ कई राज की बातें लेकर आती है। रात अपनी खामोशी में राज छुपाए बैठी है, और बातें अभी बाकी हैं। जो होना है उसे वक्त के हवाले कर दो, क्योंकि सुकून इसी कबूलियत में है। रात बाकी है, बात बाकी है, चांदनी में ख्वाबों की रोशनी बाकी है। होना है जो तकदीर के सुपुर्द कर दो, दिल में फ़क्त दुआ की खुशबू बाकी है।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाजों में नमक हलाल फिल्म का गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नयरंग और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
1: FM रेनबो 101.9।
0: गीत सुरीले गाते जा नयरंग प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं। दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ नजर की मोहताज नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में बसी एक रोशनी है। जब दिल किसी को चाहने लगता है तो आंखों के खुलने या बंद होने से फर्क नहीं पड़ता। महबूब का अक्स हर हाल में दिखाई देता है। मोहब्बत वो चिराग है जो आंखों के बजाय दिल को रोशन करता है। चाहे आंखें खुली हों या बंद, महबूब की मौजूदगी दिल के कोने कोने में महसूस होती है।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

जारी है नारंग प्रोग्राम में। दोस्तों, जब मोहब्बत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, इश्क जब हद से गुज़र जाता है, तो मरने की बात होती है। इश्क में मरने की बात होती है। इश्क सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि इसमें फना होने की कैफियत भी शामिल है। जब मोहब्बत अपनी इंतहा को पहुँचती है, तो आशिक को अपनी ज़ात की परवाह नहीं होती। वो महबूब के लिए जीने और मरने दोनों को कबूल कर लेता है। यही वो मुकाम है जहाँ इश्क इंसान को आम जिंदगी से बुलंद करके एक लाजवाल हकीकत बना देता है। इश्क वो आग है जो दिल को जलाकर रोशनी अता करती है। इसमें जीने की खुशबू भी है और मरने की शिद्दत भी। आशिक के लिए महबूब की रज़ा ही ज़िंदगी है और जुदाई मौत।

0: लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म लोफर में। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नयरंग और आपने ट्यून किया है FM 101.9 MHz।
1: FM Rainbow 101.9

नैरंग प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और गीत सुरीले गाते जा इस सिलसिले के तहत फिल्मी नगमे पेश किए जा रहे हैं। दोस्तों, बादलों की दीवानगी में एक अजीब सा सुकून छिपा है। वो जैसे दिल के जज्बात को समझकर बरसने लगते हैं और हर खतरा किसी याद, किसी एहसास, किसी मोहब्बत का पैगाम बन जाता है। दीवाना हुआ बादल, दिल भीग गया साथ में, यादों की खुशबू उठी हवा के हाथ में, हर बूंद में

एक कहानी, हर दम छिप में एक ख्वाब, मोहब्बत ने छू लिया फजा के साथ में। कभी कभी कुदरत भी दिल के जज्बात में शरीक हो जाती है, ऐसे ही जज्बात पेश करता है ये नगमा।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में कश्मीर की कली फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। दोस्तों, नीले अंबर पर यानी नीले आसमान पर जब चांद उतरता है तो फ़ज़ा में एक खामोश जादू फैल जाता है। हवा नर्म हो जाती है, बादलों के किनारे चांदनी से चमकने लगते हैं और दिल जैसे किसी पुरानी याद के एहसास में खो जाता है। नीले नीले अंबर पर चांद का उभरना गोया ख्वाबों की दुनिया का दरवाज़ा खुल जाना है। हर सितारा जैसे कोई कहानी सुनाता है और चांद अपनी रोशनी में दिलों के ज़ख्मों को मरहम देता है।

साधना सरगम को आपने सुना कलाकार फिल्म में। समाइन इसी गीत पर गीत सुरीले गाते जा। अब यहीं पर सिलसिला गीत सुरीले गाते जा का यहीं पर थमता है। हम उम्मीद करते हैं कि सारे गीत जो आज के प्रोग्राम नारंग में गीत सुरीले गाते जा के तहत पेश किए गए आपने पसंद किए होंगे। सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा जो नारंग में पेश किया जाता है हर शब आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर। अब आइए सुनते हैं पयामे शब।

0: अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। इंसान अक्सर दूसरों को खुश करने और उनकी तवक्कात पर पूरा उतरने में अपनी असल शख्सियत को खो देता है। हालांकि कामयाब जिंदगी का राज अपने अंदर झांकने और अपनी सलाहियतों को पहचानने में है। अगर कोई आपको समझ न सके या आपका साथ न दे तो मायूस ना हो। सबसे अहम बात यह है कि इंसान खुद अपना सच्चा साथी बन जाए। जो शख्स अपने आप को पहचान लेता है वो जिंदगी के हर अंधेरे में अपनी रोशनी खुद तलाश कर लेता है।
1: पयाम शब आपने समाप्त किया। तहरीर व पेशकश थी जनाब नदीम अख्तर जैदी की। समाइन, पयाम शब के साथ ही आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग अपने अख्ताम को पहुंचता है। हमारी आपसे मुलाकात होगी कल शब 9:30 पर। तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। शब खैर।

0: यह आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। स्टूडियो से घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने

0: कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the Civil Investiture Ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found.

आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए शुरू करते हैं सफर गीत मेरे मनमीत। साथ हूं आज मैं आपके माधुरी। गीत मेरे मनमीत में सुनिए सदाबहार फिल्मी गीत, वो भी बिना रुके।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर जिसे आप सुन रहे हैं वो है गीत मेरे मनमीत का, जिसमें हम लेकर आपके लिए आते हैं गोल्डन एरा के गोल्डन गीतों को, वो भी बिना रुके।

और इसी के साथ गीत मेरे मनमीत का ये सफर यहीं समाप्त होता है और दीजिए माधुरी को विदा। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों के अनुसार आज सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे वे, जहां सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना

0: ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे. बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है. धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा. पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे. इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है. श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है. राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान CSIR और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NIAS के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान संचार, जनभागीदारी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करना है. नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है. महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा. जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है. अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे. मुख्यमंत्री ने घटना के जांच के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा. President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the Civil Investiture Ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Minister Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. Union Home Minister Amit Shah congratulated all the luminaries and change makers who have been conferred with Padma Awards by President Draupadi Murmu. In a social media post, Mr. Shah said Prime Minister Modi has reoriented Padma Awards as an institution to drive socio-economic progress by honouring the real change makers, strengthening the society at grassroots. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials yesterday said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of the NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir, police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said that he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launched a set of strategic portals, an initiative aimed at

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं और ये सफर है निशिगंधा का। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर और इन पंक्तियों में बहुत कुछ छुपा है। इन पंक्तियों ने हमेशा ही मुझे आवाज दी, हिम्मत दी, उठकर चल पड़ने को साहस दिया। कुछ तो था इन पंक्तियों में जिसने हमेशा मुझे जगाया है। आज सोचा कि इन पंक्तियों के मतलब को आपसे भी साझा करूं निशिगंधा के बहाने।

जी हाँ दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। इसे छोटे छोटे दायरों में जीने की बजाय खुलकर जीने का नाम ही तो जिंदगानी है। सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, ये पंक्ति मात्र नहीं है बल्कि जीवन का दर्शन है। ये हमें आमंत्रित करती हैं कि दुनिया की सैर करो, उसके रंग रूप, संस्कृतियों को, स्वादों को, अनुभवों को अपना लो। जब तक सांस है तब तक जियो, बिना किसी बंधन के, बिना किसी डर के जियो, बिना किसी पछतावे के जियो, क्योंकि ये जिंदगी फिर नहीं मिलेगी। जी हाँ, फिर कहाँ मिलेगी ऐसी जिंदगानी।

देखिए ना, आज का हर इंसान बहुत से नियमों से, अपेक्षाओं से और भय के पिंजरे में कैद है। समाज कहता है ऐसा करो, वैसा मत करो, फिर धर्म कहता कुछ और ही है, परिवार कहता है स्थिर हो जाओ, बस जाओ, लेकिन गाफिल जिंदगानी बंधनों से मुक्ति का नाम है। इसका मतलब संकीर्णता से मुक्ति है। ये कहती है कि दुनिया का हर कोना अद्भुत है, पहाड़, समुद्र, जंगल, शहर, गांव, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान, सब कुछ देखो। दुनिया घूमने का मतलब केवल पर्यटन नहीं है, ये अनुभवों का संग्रह है। जितना आप ज्यादा लोगों को जानेंगे, संस्कृतियों को पहचानेंगे, आपका अनुभव, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। और ज्ञान ही इंसान में समझ को बढ़ाता है, इंसान को असल मायनों में इंसान बनाता है।

कहा, जिंदगी हर कुछ रही तो जवानी फिर कहा। और लोग घूमते हैं देश विदेश, न जाने कहां कहां, और बटोरते हैं ढेर सारे अनुभव। जब आप इटली के रोम में कोलेजियम के खंडहरों के सामने खड़े होते हैं तो इतिहास जीवंत हो उठता है। जापान के चेरी ब्लॉसम के नीचे बैठकर साकुरा देखते हैं तो क्षणभंगुरता का सबब मिलता है। जब राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पर सूर्यास्त देखते हैं तो लगता है कि जीवन कितना विशाल है। हर जगह इंसान की कहानी अलग अलग है, फिर भी पता है क्या एक है। एक चीज एक है कि वो एक ही चाहत में घूमता है, और वो चाहत है खुशी की।

बिल्कुल, यादें छोड़ जाता है और बहुत सारी यादें वो समेट भी लाता है। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफ़र है निशिगंधा का। आज हम बात कर रहे हैं उन ख़ास पंक्तियों की जिसमें सचमुच जीवन का दर्शन छिपा है, और वो पंक्तियां हैं, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है निशिगंधा का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। और आज टटोल रहे हैं कुछ शब्दों के अर्थ निशिगंधा के बहाने। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, इस लाइन में छुपा है जिंदगी का फलसफा, जिसे ढूंढ रहे हैं हम, जिसे कह रहे हैं हम, जिसे गुनगुना रहे हैं हम और जिसे गा रहे हैं हम।

0: कभी कभी।
1: गाफिल जिंदगानी यानी बेसुध बेखबर। सच्ची जिंदगी तो तब शुरू होती है जब हम तेरा मेरा का भेद मिटा देते हैं। ये जिंदगानी हमें सिखाती है कि सुख वस्तुओं में नहीं, अनुभवों में है। नया खाना खाना, नई भाषा सीखना, अनजान लोगों से दोस्ती करना, गलतियां करना और फिर उन गलतियों से सीखना, यही तो जीवन है। अनुभवों का असली नाम ही जीवन है और जीवन में हमें तरह तरह के अनुभव लेते रहने चाहिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। सफर है निशिगंधा का और हम बात कर रहे हैं सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। इसी सफर में फिर कहाँ, ये सवाल बहुत गहरा है। मौत के बाद क्या, कोई नहीं जानता। स्वर्ग नर्क की कहानियां तो सिर्फ कहानियां ही हैं, जो कुछ है वो यही है, इसी धरती पर है, इसी वक्त में है। अगर यही नहीं जिया तो फिर कहाँ जाना है, अगर यहाँ नहीं जिया तो फिर कहीं और जाकर भी क्या मिलने वाला है। कई लोग कहते हैं पैसे नहीं है, समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी भी कोई भी समय परफेक्ट नहीं आता कि हाँ सब कुछ बढ़िया होगा और फिर हम कहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता। समय को अपने लिए परफेक्ट बनाना पड़ता है और इसके लिए आप ही को प्रयास करना पड़ेगा। ये जो समय बहुत तेजी से भाग रहा है ना, इसे थोड़ा रोक लीजिए अपने लिए।

0: चल।
1: ये जीवन दर्शन हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ कमाने और खर्च करने वाली मशीन नहीं हैं, हम महसूस करने वाले, अनुभव करने वाले प्राणी हैं। इतनी सुंदर धरती है, हमारी आत्मा को हवा चाहिए, रोशनी चाहिए, नई नई सुगंध चाहिए। जब तक हमारा शरीर साथ दे रहा है, तब तक सैर करो। अंत में यही कहना चाहूंगी, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी का मतलब है खुलकर जीना, बेखौफ जीना और प्रेम से जीना। आप अपने अनुभवों को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें आकार दे सकते हैं, कोई कहानी कर सकते हैं, कोई कविता या गीत बन सकती है आपका अनुभव, किसी को राह दिखा सकती है, रिपोर्टाज बन सकती है। और ये जो इतना सुंदर चित्रकार है, उसने जो ये चित्रकारी की है हमें अलग अलग अनुभव देने के लिए, हमें जीवन का दर्शन देने के लिए, तो हमें उन चीजों को देखना और समझना चाहिए। इसी के साथ दीजिए माधुरी को निशिगंधा से इजाजत। ये आखिरी गीत निशिगंधा का आप सभी के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ. एन. राजन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगी। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के इस वक्त हम आपके लिए लेकर आते हैं गीत सुहाने, जिसमें आप सुनते हैं ओल्ड क्लासिक्स। और आज की रात आपके साथ मैं हूँ माधुरी।

0: जरा हटके जरा।
1: ये जिंदगी तो ऐसी ही है, किसी के लिए मुश्किल है तो किसी के लिए आसान है। ये गीत सुना आपने फिल्म CID से मोहम्मद रफ़ी और गीता जी के आवाज़ों में। और अगला गीत आपके लिए ये रहा।

कलाकार मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप, फिल्म गूंज उठी शहनाई से, संगीत दिया वसंत देसाई ने।

नवरंग फिल्म से ये प्यारा सा गीत आप सभी सुन रहे थे महेंद्र कपूर के आवाज में, संगीत सी रामचंद्र का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स।

0: AIR at 90.
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स।

किसी का साथ ही ऐसा हो कि मन कर जाए कि दिन और रात बस उसी के साथ रहें, तो क्या बात है। और ये जो बात हुई, ये हुई फिल्म मिस बॉम्बे में, और आवाज़ें थीं सुमन और मोहम्मद रफ़ी साहब की। हंसराज बहल का संगीत था। और अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं अब, जो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, फिल्म चलती का नाम गाड़ी से।

0: मगर आपने तो कहा था कि
1: हीरा,
0: तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
1: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
0: और भला क्या काम हो सकता है?
1: और बहुत से काम हो सकते हैं।
0: जैसे?
1: कैसे कुछ?
0: मैं हर काम कर सकता हूँ।
1: सोच लो।
0: सोच लिया।
1: और अगर न कर सके तो?
0: हार मान जाऊंगा।
1: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
0: क्या?
1: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
0: टोकरी?
1: मंजूर।
0: मंजूर, काम तो बताइए।
1: जरा सोच तो लू। वो देखते हो वो?
0: हाँ।
1: क्या?
0: मुर्गी।
1: हाँ, पकड़ लाओ
0: मुर्गी।
1: हाँ।
0: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।

गाने होते हैं ना कि जब भी सुनो तो मन जो है रिफ्रेश सा हो जाता है, फ्रेश कर देता है मन को, तो ये भी कुछ ऐसा ही है, ऐसे सेंटर फ्रेश की तरह इसकी भी टेस्ट आती है इस गाने की। और ये जो गीत था, ये था फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा जी की, और संगीत एस टी परमन साहब का।

फिल्म मल्हार से ये गीत आप सुन रहे थे लता और मुकेश की आवाज़ में। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म बैजू बावरा से लता जी की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम कल सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। विज्ञान और केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात सुरमई का ये सफर लेकर मैं माधुरी हूँ आज की रात आप सभी के साथ।

तूने खलवत में कभी ये भी तो सोचा होगा, तू न होगा तो मेरे दिल में अंधेरा होगा। आंख में ठहरे समंदर ये पता देते हैं, दिल के सहरा पे कोई अब्र तो बरसा होगा।

दिन को भटकूंगा तेरी प्यास का सहरा बनकर, रात खो जाऊंगा तुझ में तेरा साया बनकर। मैं की मंजिल था कभी तेरे एक ख्वाब की, अब रह गया हूं तेरा एक भूलता रास्ता बनकर। उसने अच्छा किया ठुकरा दिया मुझको, वरना खुद उसे जीना ही पड़ता मेरे जैसा बनकर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर

0: सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ।

तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी कि मुझको रखने पड़े अपने कान कागज पर।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 MHz पर, और ये सफर है रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि इस सफर के गीतों गजल आपको पसंद आ रहे होंगे और आपकी रात भी हमारी रात की तरह अच्छी गुजर रही होगी। और कई बार बातों ही बातों में ऐसी बातें हो जाती हैं कि लगता है कि खामोशियों को सुनना शुरू कर दें। कुछ हिस्सा ही है अगला गीत, कुछ ना कहो।

खुशबुएं लहरें समंदर पे कोई बात होगी, प्यार में आगे बढ़ेंगे तो प्यार की कोई किताब होगी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ. ईवा ओर्तेगा पाइनो के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत सामग्री, डिजिटल हेल्थ और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री और नागा पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष नेफ्यू रियो ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के एनपीएफ में विलय को निर्वाचन आयोग से औपचारिक मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। कोहिमा में पार्टी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रियो ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस महीने की 4 तारीख को विलय को औपचारिक मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स

हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात के 3:11 और 15 सेकंड हुए हैं। सुस्वागतम, आप सभी का स्वागत करते हुए हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यादें भी क्या हैं और कब बिन बुलाए दस्तक दे देती हैं, और हमें भी जब आपकी याद आती है हम आपसे मिलने पहुंच जाते हैं। ना जाने कौन सी खूबी है तुझ में, जो तू दूर होकर भी दिल के सबसे करीब है। ना जाने कौन सी खूबी है तुझ में, जो तू दूर होकर भी दिल के सबसे करीब है। और दिल कहता है मत तड़पाओ उन्हें, और यादें कहती हैं बस उन्हीं के हो जाओ। तेरी यादों का समंदर कुछ ऐसा है कि हर लहर दिल को छूकर गुजर जाती है। कितनी अजीब है ये दिल की कश्मकश भी, यादें तो उनकी आती हैं और सांसें हमारी रुक जाती हैं।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म पतिता से ये गीत आपने अभी सुना। नशीली आंखों से वो जब हमें देखते हैं, नशीली आंखों से वो जब हमें देखते हैं, हम घबरा के अपनी आंखें झुका लेते हैं। कैसे मिलाएं हम उन आंखों से आंखें, सुना है वो आंखों से अपना बना लेते हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जाने अनजाने से अभी आपने गीत सुना। वादा नहीं कोई ना ही कोई कसम, वादा नहीं कोई ना ही कोई कसम, फिर भी तुझसे प्यार है और तेरा इंतजार है। तेरे चेहरे की उदासी दे रही है गवाही, मुझसे जुदा होकर भी तू भी बेकरार है। आइए सुनते हैं टैक्सी चोर फिल्म से किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं कारवां फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

अक्सर तन्हा चांदनी रातों में, अक्सर तन्हा चांदनी रातों में मन की खामोशी है और दिल कुछ कहना चाहता है। आइए सुनते हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आवारा फिल्म से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़क
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म तीन देवियां से ये गीत आपने सुना। इस बारिश पर ना जाओ मेरी आंखों में देखो, इस बारिश पर ना जाओ मेरी आंखों में देखो, दिल के दरिया में कहीं एक तूफान उठा होगा। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म 9 2 11 से ये गीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म रंगीला रथ से ये भी गीत आप सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही हम राही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान

0: के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वॉशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत भी करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधनों निर्देशनों में RBI शहरी सहकारी बैंक साधन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल है। RBI ने कहा है कि यह कदम सहकारी बैंकों में बेहतर प्रशासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। DGCA ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो देश में सबसे अधिक तापमान में शामिल रहा। और खेलों में लक्ष्य सेन और PV सिंधु आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष सट्टी मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में PV सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan.

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर हमारा मन खुश है तो हमें सब जगह अच्छा ही नजर आता है। जमीन, आसमां, सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, अपने मन मस्तिष्क को हमेशा शांत रखिए, जिससे आपका तन भी स्वस्थ रहेगा और आप भी।

अमित कुमार की आवाज में फिल्म तेरी कसम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, दिल में जो भी बातें हैं वो किसी अपने के साथ जरूर शेयर कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपके मन का बोझ भी हल्का हो जाता है।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म जोशीला से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, बेकार की दुख चिंता में अपना समय मत गवाइए, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहता है। आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सूरज और चंदा से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं खानदान फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

जिंदगी का सफर बहुत सुहाना है दोस्तों, बस ये आपको देखना है कि इसे जीना किस अंदाज में है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अंदाज से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जिगरी दोस्त से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, घबराना नहीं है, क्योंकि जिंदगी का असूल है तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म रेशमी रुमाल से ये गीत।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म गीत गंगा से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी की शर्तों को बदल देते हैं। आइए सुनते हैं वक्त फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत।

दोस्तों, इसी के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत विदेश मंत्री

0: पिछले वर्ष वॉशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति गंगटोक में आज शाम नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। राष्ट्रपति कल नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे आज राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। आज सुबह वे BSF की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, BSF अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। रिजर्व बैंक RBI ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में RBI शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro

सुबह के 5:11 और 13 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह की बेला है और ऐसे में ध्यान को प्रभु सिमरन में लगाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा भजन जो गाया है तनुश्री कश्यप शर्मा ने।

दोस्तों, गीत गाते गुनगुनाते जिंदगी का ये सफ़र बिताते चलो, हंसते मुस्कुराते ये प्यारे से पलों से अपने को महकाते चलो।

जसपाल सिंह और साथियों की आवाज़ में फिल्म गीत गाता चल से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, ज़िंदगी में आए हैं तो बिछड़े हुओं को मिलाते चलो और मंजिल की धुन में झूमते गाते चलो, बिल्कुल इस गीत की तरह। अनोखी अदा फिल्म से आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में, फिल्म घर संसार से।